की बहुत अगर सुना होगी तो शायद हवा दे सकता है सब कुछ बार होता है ना, लोगों को वो खुदा है तारीख ईशा दशक देव में कौन से तारीख है।

0: जयमाला संध्या सभा छ बजे हमारा सन्देश को अपने स्वागतकार संग्रह बिंदु संग्रह में सन्देश राजापुर एफएम गुलरिया पार्टी रेडियो पटपुर एफएम कोहरपुर रेडियो आदि मालो झारखी गांव पालिका माध्यम से प्रसन्न प्रसारण बीचगा हमारा संदेश का अधिकारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसुरी सात औरैया चैना सड़क पर पुल निर्माण कसरा स्थानीय उद्यान अवचार मशास्ती असार महीना में अड़सठी अपराध का मुद्दा चलता तिरपन प्रतिवादी पकड़ बर्दिया में 90% आंदोलन खरीदल एक वर्ष हमारा स्टेट निकुंज में 27,025 पर्यटक प्रवेश 2.5 करोड़ ख्याल राजस्व संकलन गोपाल सुधार के हम अच्छी मात्रा से ख्याल बाल बालिका सजाए घटाए से एम संशोधन का तैयारी पूरा समाचार बिंदु से
1: राजधानी नगर पालिका साथ हरैया जिला सड़क में निर्माणाधीन पुल समय में निर्माणाधीन स्थानीय वासी अवचात्मक समस्या भक्ति भरवाकर

0: क्षेत्र समुदाय नवगत नागरिक पहचान बचाई है परम्परागत हस्तकला संरक्षण संग नवन पुस्तक शिव सिखने कार्यक्रम संचालन कर आवश्यकता भर इस शिव संग व्यवसायिक अंतर्ती थार समुदाय का प्राण पुस्ता नवगत मौलिक हस्तकला का ज्ञान शिव आदि पुस्ता में सुरक्षित रूप में हस्तांतरण पुस्तांतरण और संरक्षण पर प्रथम पूर्ण विश्वास राष्ट्रीय निकुंज में आर्थिक वर्ष 2082-83 में 27,025 जना पर्यटक प्रमंत्रणबाट निकुंज कर्मचारी अवधि में 18,907 नेपाली 1,217 सात मुलुक 6,901 विदेशी पर्यटक निकुंज प्रदेश आगत आर्थिक वर्ष 2081-82 में 28,067 जना तथा आर्थिक वर्ष 2081-82 में 26,131 जना पर्यटक निकुंज पुगेर गैर आर्थिक वर्ष में जेएमजेड आंदोलन को चुनाव को कारण आगत वर्ष का तुलना में आंतरिक साथ तथा विदेशी पर्यटक का संख्या को स्वागत निकुंज जनाएगा। निकुंज का सूचना अधिकारी एवं संरक्षण अधिकृत महेश नेपाली के अनुसार पर्यटक प्रवेश शुल्क मध्ये 1,31,59,985 रूपया हो। चैम्बर फिशिंग लगायत का आंतरिक सेवा मध्ये 1,36,52,975 रूपया गई था। पर्यटन मध्ये केवल 1,68,07,925 रूपया राजस्व संतुलन विभाग आर्थिक वर्ष 2082-83 में निकुंज कुल 4,32,51,443 रूपया राजस्व संतुलन प्रगत में करीब 63% राजस्व पर्यटन मैं प्रमुख वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार राम चालू आर्थिक वर्ष मध्य पारित पर्यटक संख्या कुछ घटना सके आंतरिक पर्यटन प्रवृत्ति आकर्षण प्रति लगती ऐसा वर्ष पर्यटक संख्या वृद्धि बिना विश्वास व्यक्त करवाट पर्यटन सीजन सके निधा प्रतिमा नेपाली पर्यटक पब्लिक उपस्थिति रहना अवलोकन सेना पर्दे राष्ट्रीय निकुंजमा हात्ती सात गोली प्रजनन केन्द्र जंगल सफारी को जंगल वा पर्यटक का मुख्य आकर्षण का रूप में पर्दा राष्ट्रीय समाचार तपाईले बिन्दु सेट
1: नेपालको बालसेवा जिल्लामा समुदायसी ध्यान कार्यपालिका वैकेन्द्रको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएको छ। सरकार बाल बालिका समय

0: इसमें पैसा मिला जो आप पढ़े चलते थे जो कराएंगे वो सब कुछ आज दिखा नहीं मिल रहा था
1: दिखा
0: दिखाई दिखा

0: persona com gostos de pode publicar e para contar a vocês que para contar por um WhatsApp, nós somos só para vos traduzir a matéria para mim, de caso que por nós trabalhar só que somos a vida da Nicole de Porto. Só no cliente do domínio de memória de rádio direito do cartão da Bala Via Chetí com o Luiz Aprisal. Marcava a matar o menino subjetivo que a vez sobre o pedido para a autorita com o Porto Sal. Tabo Cabral, Santo Cirão, Gajó. कोसी नदी में पानी का बहाव बढ़े कोसी नदी आसपास का बासिंदाई उच्च सतर्कता अपनाने प्रणाली आग्रह जिला प्रहरी कार्यालय सत्तरी नदी किनारे में अनावश्यक रूप में नजान बाढ़ी समिति सूचना तथा सुरक्षा नियंत्रण सरकार में करना आग्रह गर्नुभएको हो। कार्यालय का अनुसार आज बिहान 8 बजे 176,305 क्यूसेक रहेको पानी का बहाव दिवसो 4 बजेसम्म बढेर 2,9,840 क्यूसेक पुगेको हो। पानी को बहाव नजिक पुगेपछि कोशी ब्यारेजमा सतर्कता स्वरूप रातो झण्डा र रातो बत्ती बाँधिएको प्रहरी मार्ग परीक्षक हिमराज घिमिरेले सिआइएनसँग बताउनुभयो।
1: सहयोग आवश्यक पर्ने नेपाल प्रहरीको 170 प्रहरी

0: चा आवाज
1: लैंगिक समानता महिला अधिकार घरेलू हिंसा विरुद्ध बहस
0: महिला किसान का संघर्ष

0: बनाता तत्कालीन जब कैंसर ट्यूमर तथा स्वास्थ्य तथा संबंधी दीर्घकालीन समस्या देखी
1: अभी नानी बिस्तारित गर्नु भयो हामी नानी किरा लाग्छ

0: शुरू करे और नौ बजे बजे साग सब्जी फल फूल सभी का पोषकर पूरा खाना ले बच्चा खाना तंदुरुस्त है पूरा खाना संसद भी पूरा संभव इस प्रकार जारी करे।
1: एक पटक सेवा करते हैं बहुत आवश्यक से जीवन वाला हस्त धन्यवाद।